0: Here. Oh! Hee-hee-ho! Hee-hee-ho! Oh! Ma-ma-ma! Oh! Ma-ma-ma! Oh! Hey! Hey, hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh,
1: bada bada bada dali ke laaya talai tin.
0: Hey, hey, hey,
1: भोजन खोटल इनका डाकनी का कंध करो भवा ना इनका तो भजन
2: उठी में सत वारे जो माल पठिया था कहले
1: असन वडील पी चारी जड़ी रीते असी चारी हों हलो था ना अड़ी रीते अस दादा चारी हुआ अस दादा जा बापा चारी हुआ तो असो पीढ़ी थी हुई इनमें ये परम पार्थी माल जो हलो अच्छे।

0: कीड़ों के भी आएंगे, मगर ये थे
1: दे माथा कंडा मत फगा हर मकर भी आदमी फगा तो कंडा भी फगा
0: बकरा लड़की बड़ी रही।

0: pariente.
1: खाना है खाने
0: मर
1: दपर हाँ तो तो आ जाए चप्पल जली में खाने दी तो कोई मोरी लग नहीं अरे कसम

0: चांद कोई करो आए मीटिंग निकी है वह मालधारी के आ चिंदा तो आऊँ मोड़ पोचिंदोस आऊँ तो एडा अल्लाह को बारह साढ़े अग्यारह बारह वगे पोचिंदोस वेले में वेलो
1: સરકાર મુખ્યમંત્રી પ્રધાન

0: நான் கேரு பா பண்ணு
1: பட்டேல் பட்டேல்
0: பட்டேல் வரோம் சாய் பாய் பிந்தா
1: மால் கட்ட ரே
0: கொரு கொரு மால் போத்ரே பாயஞ்சு ஜி ஆஜி ஜமீன் கி ஹே ஜெ डुकार और बाबा ये वाड़ी में ही केदा वाड़ थी केदा की थी तदे डी वाला ही बाहर जंगल में निकले एकड़ी भाजी बने थी नती की खाते जो मिले
2: घटी बंद के जड़ी का वस्तु जे तदे जड़ जड़ बड़ा
3: कितने हांडी है बच्चा
0: से हांडी 70 कन जे बा
3: आतले है ई
0: हो
3: तो रास्ता नदी ते उड़ा से
1: ओ तो अलग अलग धन भरो ना आले
0: ये तुम्हारी
1: ना આ બીજા ભાઈની
3: ઉ એડા વાવે ને ઓડે ઈ બીજા ભાઈની આ મારા મોટા સસરાની તમ બેઠા
1: આ આપણી જમીન છે
3: આપણી જ
1: આ અહીંયા કરીને એ બધો અંદર આ બધી આપણી છે
0: બરાબર
3: પેલા બહુ અહીંયા આવતા નીકળવાળા હવે આપ શું અસર નથી પડતો એટલે આ બધું ઓછા આવે ને આ છોકરો આખો દી ભેગો જ ફરે
0: હોય
3: ભણવા નથી જતો
0: ભણવા નથી જતો બે
3: કા
0: તો લુઈ ચાલ ન કરે
3: બાપા ને ઘોડે ઊંટ ચરાવવા પડે.

0: Dur, durumu öler ver. अगे कौन हो जी सोडा ना उठान को जे की
1: अजय की रात गई करे तो घर।

0: पहिरीं पिणु धणी वीचारा महिनत कनि था हिन में धणी वटि असां वर ऐं मंझंदा आहिनि वरे में 40-50 हज़ार जी दवाई कई आहे माल जी छा त माल जी ॾिसो त ई पूरी सिधी
1: हनी लाखोरी काथे रही वई लाखोरी हनी हाणे वीचार आहिनि वेसा पई खणे हिन घेटनि वॾा मनू में उहे कसल त कड़ो हज़ार वातार में निकिरो त हाणे
2: अड़ी तपावा तू वी कड़ो मस्क ऑइल जो दवा जो अची वे खपे तो इधर ड्रॉइन खपे तो जावा जदा सामी ना आई जगह अतुरासी सको तुम्हें

आई पिंड उठन जा का कथो आई जे घोरा ते ने मने अथो अथी करे वरा दे इंगा आई पण वरी पण ये लगे तो जे सफा वरा छडन दा तपन पो कोंटा एतरो मारो हजार 13000 महीने में कथा न करंदा पण वाला

कि असीं जॾहिं पिणु वञूं था न होॾां असांखे मालदारी चए था मिठा, कि असीं जॾहिं पिणु वञूं था होॾां असांखे मालदारी चए था मिठा। या असीं कच्छ मुल्क जा मौजीला मालदारी आहियूं मिठा।

0: वालेकुम सलाम। ठीक है। मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ री बने टाइम जुड़े तो ना बने हलाई। हाँ
1: ना
0: टाइम जुड़े ना तो ले जो कम तो जी समझी पुता की रे पूरा जो जानी तो ही तो पैर आ चो ने सुनो रही यार ना।
1: क्या है क्या?
0: ठीक है ठीक बस क्या हाल है हमारे भान जी दुआ।
1: दो आला ने मैटर जिया
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा इधर
1: ए जरा वाली बयां कर दे।
0: सायरी केड़ी बनानी तो के वफा जी को बेवफाई जी को साड़ी बनानी
1: बेवफाई शायद ही
0: बेवफाई जी बस
1: आओ
0: तो के गायल करे भाई।
1: हो
0: हां
1: क्या तो धंधा करो करो जरा
0: धंधा उठा गाड़ी लाइन तो रहती मेरा तो ही आज जर तो सजे समझे नौ रशिद बेच में आनो खाली धंधे ही पुरते हैं जरा उठा कर याला ही रहती मांडा मांडा को लोक नहीं जरे
1: तो गाड़ी दादी भी गाड़ी में लगी हुई है
0: ए
1: तो गाड़ी दादी भी गाड़ी ले गाड़ी में लगी हुई है तो
0: ना रे गाड़ी ने झंझट के नहीं उठा गाड़ी बरोबर न ते रहती मैं लाए पे ये गाड़ी में खटारा में का धक्का चले जो।
1: यही बात तो है।
0: इकने बड़े साधो ने सीधो ये धंधो बरोबर ना पण को टोला थे तो मात तारे दे पे हो जे टुकरो बेड़ो तो जे
1: सही बात है। रेती भी भरो ना जड़ी ने कोई अकेला तो करूंगा ना
0: हाँ अंदर इतने नए में भरे कर गोठम खाली करने का
1: बोटम खाली करनी थोड़ी थोड़ी तो उठाओ देन
0: एक थे 100 रुपया कथे 150 कथे 120 अट्री होगा। काहे में ये 100 रुपये फैक्ट्री ने भाग लोकल में समझी कन वजन 100 कड़ो 100 रुपये 4 कथे 50 वजन नवरे
1: नोरिक में था हुआ है।
0: कने बिठाओ को फरण कने हलण कने का।
1: मैं यूट्यूब से तो खोल ली शायरी बनाई और घटा घटा खोल ली हलाई है यूट्यूब पे। शायरी तो जिन खुल के माँ पसंद क्यों आनी
0: हाँ
1: लाइक क्या है बोला
0: ठीक यार ये बता यार बार
1: ये मैं आप बार कौन हो जाएगी तो शायरी लेके दो तुम रंगा
0: ओ गड़ो है मन।
1: ओ
0: आए वो जिंगा जो हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो फॉलोअप करो ने चाहे सहयोगी करो ना बराबर तो हो जो फोटो डाला है फोटो डाला टाइम जुड़े तो ना बना डाला है।